0: लेकिन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ वो तो कोई नहीं जान सकता है, मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। वो तो साधु हृदय है, दुष्ट हृदय वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है।
1: സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ മഹാപുരുഷൻ ജീവിതം സന്ദേശമാക്കി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാത്മജി.
2: ഗാന്ധി ചിന്തയുടെ നേർവഴി, ഗാന്ധിലയം.
1: റേഡിയോ മലബാർ 89.6 FM കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ.

आदिवासी विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और आज मैं ऐसे राज्य में आया हूं जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट आजादी के पहले से त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कई सारे क्षेत्रों में आजादी के पहले से स्ट्रक्चर्ड तरीके से